डगमग क्या करें कहा डुलावह जियो, सर्व सुख को नाए को राम नाम रस पियो। बेसुमार अथा अगणत अतोला ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै।

ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जइए तेरा अंत ना परवरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वहें सब त्या वहें तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या बहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा इक दाते इक पेखारी जी सब तेरे जो जो विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव हैं जो सेव हैं तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर दया वहें हर दया वहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पै जैना हर ते आया जी तेना टूटी जमकी फांसी जैना निरपौ जैना हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापहें जपहें बयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत बले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मिंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया हो सब तुझ ही माहे तुझमें दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेल
ਵਿਯੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਦ ਮਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣਹੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਬ ਰੜੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹੇ ਕੀਆ, ਪੰਕ ਜੋ ਮਾਹੋਂ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਅਲੇ, ਮਾਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਵਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹੋ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਇਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜੈਨਾ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮੇਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਰੰਗ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹੋ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਨਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਮਨੀ ਚਿਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसमी कबियो बाच बेनती चाओ पाई, अमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम काबो हो, आप हाथ दे महीं बचाबो हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मारे तारी है, चुनचुन शतर हमारे मारी है, आप हाथ मुझे उभरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करिहो रक्षा, राख लियो मुहे रखण हारे, साहेब सन सहाय प्यारे, दीन मन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदसकंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार रहें तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिनिया सवारी, सिवकन को सिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कड़ कड़ के पड़ पड़ की जन्ने, जाव उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तव देहे अपारा, जाव आकर्ख करत हों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत बेद भेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिर अनाद असंभ, ताका मूड़े उचारत भेदा, जाको भेव न बावत बेदा, ताको कर पाहणे अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानते, महादेव को कहत सदा शिव, रंकार का चीनत न भिव, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंडज रज से तज कीनी,
उतब जखान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवै बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आजुगा स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो वार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणगाता जे आसतो जे तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताकि काल निकट न है ऐ है रक्षा हुई ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला कृपा दृष्ट तन जहे न हरियो ताकि ताप तनक मैं हरे हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा

सगल द्वार कौ छड के गयो तोहारो द्वार, मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार। सगल द्वार कौ छड के गयो तोहारो द्वार, मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार। रामकली महला तीजा अनंत, इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता वाया से सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्द तो तंगाव हरी गेरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, इमन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसरना, अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवरना। सुबना गल्ला सुमृत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरे, घर तां तेरे सब किछ है, जिस दे हैं सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। सच नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जैनों भुखा सब गवाइया, कर शान सुख मन आए बसया, जैन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहों,

परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुर इतिहासक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकाग्र करदे हुए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। सबना दियां हाजरियां गुरु पातशाह जी दे पावन चरणा विच लग जान। आप जी रोजाना इस अस्थान तों श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता अमृत के दाते सरबंस दानी बादशाह दरवेश शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन इतिहास नूं लड़ीवार सरवण करदे आ रहे हों। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी आईयां होईयां सिख संगतां नूं निवाज रहे हन। गुरमत दा उपदेश दे के सतगुरु महाराज जी बाणी और बाणी दे रंग विच रंगदे हन। सतगुरु महाराज जी दे दरबार दे विच सिख संगतां दा आउणा और गुरु महाराज पातशाह जी किसी ना किसी दे राही जरिए समुची सिख संगत नू नाल दी नाल उपदेश भी दिंदे ने, सिखियावां भी महाराज जी दिंदे हन कि केवल नाम दे तुसी सिख नहीं बनना, तुहाडा जीवन भी गुरसिखी जीवन वर्गा होना चाहिए है। भाव जिन्हों देख के संसार आखे भी ये गुरु का सिख है। नाल दी नाल महाराज ने सिखियावां दित्तियां जो पिछले प्रसंग विच आपां सरवण किया कि गुरु महाराज ने दस्या भी हालत कहन दे भांडे की तरह ना होवे, जिहड़ा बाहरों चमकदा ते अंदर कालख दे नाल भरिया, बाहरों निर्मल ते अंदरों मैला। मारे कहिंदे गुरु दा सिख अंदरों भी मन और सुरत करके मत करके साफ सुथरे जीवन वाला होवे और बाहरी तौर ते भी अंदरों भी निर्मल होवे ते बाहरों भी निर्मल होवे। ये नहीं कि अंदर विकारां दी मल भरी होवे, मन दे तल उते काम क्रोध लोभ मोहंकार दी मल होवे ते बाहरों अपने आप नूं गुरु दा सिख अखाउंदा होवे। जां असीं रोज बाणी विच पढ़दे हां भरीए मत पापां कै संग, अंदर मत पाप नाल भरी होवे ते बाहरों धर्मी बन के दुनिया नूं दिखाउंदा होवे कि मैं बहुत वड्डा धर्मी हाँ, मरे कहिंदे नहीं। अपनी मत नूं उजल करो, अपने मन उते लगी हुई विकारां दी मैल नूं धोवो तां उस मालक दे दर ते असीं परवान हो सकदे।

सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिखते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जठ सब दुख जाय।

तुमरी महिमा बनन न सको ठाकुर उच भगवाना ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन गल राखी मेरी।

संतत ही सत संगत संग सो रंग रते जस गावत है। तरम पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिवतार नतावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छ

शिव मन गहे नत जात कबिलास को, जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट भेख किए फिरत उदास को, सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी ना।

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद जठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सजन सच्चा पातशाह सिरसाह दे साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना विसाहो जिस पास

कोट जन्म के किल विख न सहै, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूरन पैसा, दर्शन पेटत उतरी पुख।